0: ஆஸ்திரேலியா வித் இமிகிரேஷன் தான் மசலா. நான் ஜாவோ இதர் ஓதர் சித்தே ஆவுத் ஐஎம்இ அட்வைசர். அப்படி மா போலி வித் சம்ஜன் துஹாட்டி லோடனும். நாளை வரையான் தோ ஸ்கில் வீசா 186-189-190-482-491. ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட், பார்ட்னர் வீசா, பேரண்ட் வீசா, ஜா ஸ்டூடண்ட் வீசா தோ பிஆர் தக். ஹர் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் லே எக்ஸ்பர்ட் கைடன்ஸ். ஆஜ் ஹி பரோசே நால் சம்பர்க் கரோ. ஐஎம்இ அட்வைசர் கால் 02-906-3-1618. ஹுன் பேராமேட்டா சிட்னி அதே நியூ டெல்லி விச் வி.
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन .com.au.
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.
4: Thank you.

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas released by Zee Studios.
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Haji 16748.

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: सतिकाल, मैं हूं दिनी शेर गिल, से तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: टुट पैने इंग्लिश ने, देखो अपनी नेड़ले सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नू।
3: है पुत, पहला मैनू अंग्रेजी बोल के दिखा।
4: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली, ही हैव 4 लेग, 2 ईयर, 2 आई, वेरी गुड, शी वेरी फास्ट काओ।
3: हुण मेरी जठाणी नू पता लगू कि साडे घर भी अंग्रेजी आ गई।
5: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
0: ना पुत, इंसान नू परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी आ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
3: दोस्तों, मैं हां थोड़ा अपना प्रीतरपाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: etched in our memories. So
1: जिन्हे
0: भी सुन रहे भी जानते है की जिहड़ी यारां दोस्तां दी ट्रिप वाली कहानी है मैं काफी फिल्टर्ड दसी है क्योंकि जो जो अपने दोस्तां नाल जांदा है ना कि तो तुसीं सारे अपने अपने यारां दोस्तां नूं याद करो अपने वरी वरी ट्रिप्स याद करो ते मेरे ख्याल नाल साडा हुण जाण दा समां हो चुका
1: है क्विकली थोड़े जे मैसेज
0: जाण तों पहलां मैसेज पढ़िए
1: फिर आपां सी यू बाय बाय टाटा करना
0: डन हो गया
1: क्योंकि आपां हर कॉफी भी नहीं हुण तुसीं जी कराता साडा सवेर दा कॉफी कॉफी करन दे आपां ते इधर कहिंदे ने जी ट्राई इन पर्थ ग्रेट कॉफी ओके बजाज जी कहिंदे ने जी पर्थ आ जाओ ते ग्रेट कॉफी पीने तुहानू इन्हां ने कैफे दा नाम ही भेजिया जी ओके अच्छा रिचमंड दे विच ते एड्रेस ते विक्टोरिया दा लगन दिया जी कहिंदे ट्राई इन पर्थ इफ यू लव कॉफी ओके मतलब आ बीन्स ने शायद ए पर्थ च ने जिहड़े इन्हां ने भेजिया वा जिहड़ा पर कैफे है वो इन्होंने विक्टोरिया का एड्रेस लगन दिया जां फिर हो सकदा कई बार होंगे ना सेम सेम माड़ा मोटा नाम मिलता मिलता गलती हो
0: रिचमंड
1: बाकी कोई नहीं आप आवांगे पर्थ ते फिर जरूर कॉफी पीवांगे बजाज डन कर देंगे तुम टेंशन ना लो कवल जी जी कहते हैं जी गुड शो नॉर्थ और वैसट कॉफी इज द बेस्ट
0: एब्सोल्युटली राइट
1: आई लाइक स्ट्रोंग लाते कॉफी नरिंदर जौल जी कहिंदे ने जी सत श्री अकाल ते कृष्णा जी नूं वी ते मैनूं वी कहिंदे ने बहुत सोहणी गल्लबात चल रही है जी मेरे पसंदी दी कॉफी है जी लाते जिहड़ी कि सोए दुध दे नाल
0: पूरा
1: लगावे कॉफी च हो सकता बंदा सोए है यार कोई भी पी सकता दुध आ मिल्क
0: आते
1: जी सोए लाते दुध दे नाल एक दस कु बजे ते दूजा तीन कु बजे जरूरी चाहिदा है पाया ना विच
0: टाइमिंग गुड
1: पांच घंटिया का यह वधिया गीता नाइस हो गया घर की कॉफी मशीन च इदा ही बनाई दी है जी अच्छा घरे कॉफी मशीन ने रखी है अपने आप बिजी रखने लई ना घरे चीजा चाहिए कितना कुछ ना कुछ बंदा करदा रहे गुरसेव जी कहिंदे ने जी आवाज ओके जी पुराना मैसेज इन्हां नूं उदों थोड़ी जी आवाज घट आ रही सी हूँ तो आई थिंक ठीक आँदी होनी है जतेंद्र जी ने अपनी फोटो भेजती जे भी एज अ हैड शैफ काम करते हैं अपने कैफे के अपना कैफे है भाजी आप हैड शैफ हैं इतने उ कैफे सच जिहड़ा मैं तुहानू दस्सिया मैं लगा पीण गए है पर ते आप शैफ ने
0: शैफ ने भाजी शैफ ने
1: नाइस इन्होंने पूरा ब्लैक सूट पाया तो उत्ते शैफ कैप पाई है
0: क्या बात है
1: अच्छा तुम शैफ हो है ना कॉफी भी बना लेंदे होने वैसे तो शैफ भी
0: बना लेते बना ही लैंदा होगा यार
1: आप बना के पीते हो के अगे वरिष्ठा नु कहते हो भी ए आई नहीं तो लाते ना इदा भी होंगे ना बंदा आर्डर जहा मार
0: शैफ है
1: सुखदीप सिंह उमड़ जी कहते ने जी कहिंदे मैं अदरक वाली चाह ते तेनू कॉफी लाटे हथीं बना के पिउंदी आ एक तेरी मेरी फोटो दी स्नैप खिच फेसबुक ते पाउणी आ
0: वाह
1: तू बैठी रही सामने तेनू रज के तकांगे तू बैठी रही सामने तेनू रज के तकांगे आ जाई टाइम नाल उठ के बाकी गल्लां चढ़दे सूरज दियां किरणा विच बह के दसांगे आपां तां चाह दे शौकीन
0: घुमण साहब
1: नाइस हो गया
0: वेरी नाइस
1: डन मन गए ही चाह कहिंदे ने जी घुमण साहब एक होर ने यह कहिंदे ने जी माई फेवरेट लोंग ब्लैक एक्सप्रैसो शॉट बिफोर 6 AM
0: सीरियस मैन हो भाई जी तुसीं सीरियस मैन हो लाइफ में चेक हो सही

0: सही डेट है.
1: After I want in a day, then I would like a mocha with espresso shot as well.
2: Oye,
1: nice. Mocha is nice as well.
2: Mocha क्या है डा?
1: Pretty good. देशबंधु भारतवाज जी, good morning भाई. दिने किन्हने boys ते हाजी परिवार नू have a terrific Thursday.
2: Terrific. Thank you जी, thank you.
1: Nice. बाकी 5-7 मैसेज आपां नू तोता आई थिंक सवेर वाले होणगे पैरट आया जी इन्हां ने आपां हुण माफी है थोड़ा लेट हो गई तुहाडे पढ़दे पर हुण आपां जांच लैणी है क्योंकि आपां अगों ना लेट हो जाईए ये बहुत जरूरी गल है लास्ट मैसेज मैं पढ़ना तो फिर आपां सी जी बाय बाय टाटा करनी कहिंदे ने जी सत श्री अकाल चाहल जी भेजदे ने मैसेज माई फेवरेट इज ओट लाटे अच्छा ओट मिल्क लाटे विद और विदाउट हनी डिपेंडिंग अपॉन द वैदर एंड मूड आए आ जिहड़ी गल कही आ ना तुसीं लास्ट ते
2: वैदर ते डिपेंड
1: पड़िया मैसेज
2: नाइस
1: तां ही पड़िया क्योंकि जरूरी है कहिंदे ने कि जदों मूड होवे ते वैदर होवे फिर ही कॉफी वधिया लगदी उस हिसाब दी एक मैसेज आ जी हिंदी दे विच आ ए मैनूं लगदा मैं ना ही पढ़ां ते चंगी गल क्योंकि सेटिंग जी
2: हिम्मत मारो
1: चिंता से चतुराई घटे
2: चतुराई
1: सही है ना चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर हाँ तो सही है
2: वाह
1: लोभ से लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर
2: वाह वाह वाह
1: अरे वाह क्या बात है
2: कबीर के दोहे
1: और दूसरा रूप भी है इसका कोई चिंता बिन बतुराई नहीं चिंता बिन चतुराई नहीं
2: बतुराई कौन है
1: दुख बिन नहीं शरीर
2: नहीं शरीर
1: लोभ बिन लक्ष्मी नहीं जूठो दास कबीर
2: ओए बल्ले वीर ने
1: ये आप लिखे पे तला दा नहीं सैम जी ने भेजा सन
2: आपे बोले आप मनावे वेरी गुड
1: सॉरी जे मेरी हिंदी अगे पीछे हो गई अरे पाजी कहंदे ने आई लव कोडल कोल्ड लाते ठंडी लाते हाफ स्कूप विच मोका फ्लेवर दा प्रोटीन पाया होवे ते फिर कहंदे मैनूं मजा आउंदा
2: ओए गुड
1: जितेंद्र जी कहंदे भाजी अपने कोल वधिया ब्रिस्टा हैगा वा बेस्ट कॉफी आ अपने कोल बेस्ट मशीन भी आ मैं ते ब्रिस्टा प्रो कोर्स भी कीता है सो नो बिग डील फॉर मी फॉर अ कॉफी आजो कॉफी डेट विद फंटेस्टिक बॉयस ओह माय गॉड
2: यार भाई सानू कह रहे काफी टाइम तो जाना आपा किसे ने डन हो गया
1: पहले भी कह रहे सी
2: पहले भी जदों याद आपा लाइव कीता सीगा तद तो भाई ने फोटोआं भेजियां
1: सी जितेंद्र जी तुसी कैफे दा एड्रेस भेजो ते जदों बजट थोड़ा साडा लो हो गया भाई इत्थे लागे बने नहीं स्पेंड कर सकांगे फिर अहीं तुहाडे कोल आवांगे
2: माणे हुंदा भरावां ते
1: ओ यार फिर की हद की है औखे टाइम ते आपां एक दूजे दे काम आना जी बिल्कुल हुण आपां पर इजाजत लैणी है क्योंकि औखा टाइम साडे ते ना अज सी यू बाय बाय टाटा गाइस
2: बाय बाय कृष्णा जी यस हैव अ नाइस डे खुश रहो स्वस्थ रहो आनंदित रहो मस्त रहो सुंदर रहो रेडियो हां जी 1674 AM

0: विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
1: हुण थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
0: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

ग्रोवर्स, वीड ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हाँ जी AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: टुट पैने इंग्लिश ने, देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नू।
3: है पुत, पहला मैनू अंग्रेजी बोल के दिखा।
4: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली, ही हैव 4 लेग, 2 ईयर, 2 आई, वेरी गुड, शी वेरी फास्ट काओ।
3: हुण मेरी जठाणी नू पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ गई।
5: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
6: ना पुत, इंसान नू परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी।
7: हेलो, मैं हूं सनी देओल और आप सुन रहे हैं हां जी 1674 AM।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी माँ बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुन पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
5: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: हाय मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: 18 and Panorama Studios production present.
1: नहीं बेटी के लिए justice चाहिए.
2: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
0: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
0: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
0: Overseas released by Zee Studios.

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ
4: ਈਦ ਯੁੰਗ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਜਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212 216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: शेरनेक्सस।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट
1: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए
2: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए
0: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावर एंड मेनी मोर
3: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
0: Overseas release by Zee Studios.

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
5: चल दोस्तों, मैं हां थोड़ा अपना प्रीतरपाल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो, हां जी 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। So, दोस्तों मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस

हाँ जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हाँ जी 16-74 ये नहीं है 71-72 ये है 16-74 ये है 16-74 सुनते रहो हाँ जी AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए,

0: तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।
1: हाँ जी 1674 है।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinemas 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Z Studios.
4: पीजी वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
5: सासिकाल शुभ बोए बादशाह। तो तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हाँ जी।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: मन इच्छा नानक फल पावो।
1: हालत पालत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उरतार।
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच परीखिया।
1: मन ता नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पाव जाए।
0: सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी।
1: टीका टीक रखो मन माहे, नानक बहर न आवे जाहे।
0: इसते दूर कहा को जाए, उबरे रख न हार ते आए।
1: निरभउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै।
0: जिस प्रभु रखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख।
1: चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस को कोई न पहुंचन हार।
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ता कह कारज पूरा।
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेख तो उदरत श्रेष्ट।
0: चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप।
1: तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।
0: जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट न आवत काल।
1: अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भल जना कै मन विश्राम। 28 श्लोक।
1: ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा।
1: सगल समिगरी एक स्कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है।
0: नौनद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम।
1: सुन समाध अनहत तै नाद, कहन न जाई अचार्य विस्माद।
0: इन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिसन सो जी पाए।
1: सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहे आप भगवंत।
0: करण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल।
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
0: कौन पानी बैसंतर माहे, चार कुण दै दिसै समाहे।
1: किसते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नखत्र मैं एक।
1: वाणी प्रभु की सब को बोलै, आप अडूल न कबहु डूलै।
0: सर्व करा कर खेलै खेल, मोल न पाइए गुणे अमोल।
1: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत, धारहे ओ स्वामी ओत पोत।
0: गुर प्रसाद परम का नाश, नानक तिन मैं एहो विसास।
1: संत जना का पीखन सा ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म।
0: जना सुने सो बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन।
1: जन जाता तिसकी एह रहत, सत बचन साधु सब कहत।
0: जो जो होए सो इश्क माने, करन करावन हर प्रभ जाने।
1: अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सा मोही।
0: आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत।
1: तिस पावे ता करे विस्थार, तिस पावे ता एक अंकार।
0: अनक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए।
1: कवन लिखत कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर।
0: अंतरगा जिस आप जनाए, नानक तिस चन आप बुझाए।
1: सर्व भूत अवतारा, सर्व नैन आपे खनहारा।
0: सगल समगरी जा का तना, आपन जस आप ही सुना।
1: आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया।
0: सबके मदल पत्तो रह, जो कुछ कहना सो आपे कह।
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लए समाए।
0: इसते हुए सुनाही बुरा, उरे कहो हो किने कुछ करा।
1: आप ला कर तू ततनी की, आपे जाने अपने जी की।
0: आप साज तारी सब साज, ओत पोत आपन संग्राज।
1: ताकि गत नित कही न जाए, दूसर हुए ता सो जी पाए।
0: इसका या सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जान।
1: जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभु सोए।
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान।
1: धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया।
0: जा नामन कहे सुआओ, जन कह संचित आवे नाओ।
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भग जना के मन विश्राम। 28 श्लोक।
1: पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे।
1: सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद।
0: आस नित्या गो तरंग, संत जना की दूर मन मंग।
1: आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो।
0: हर तन की भर लिहो भंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार।
1: खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद।
0: नरक निवार उर्धारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो।
1: चित चित वो नारायण, एक एक रूप जाके रंग अनेक।
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल।
1: सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार।
0: उत्तम श्लोक साध के बचन, अमोलीक लाल यह रत्न।
1: संत कमावत हो तो उदार, आप तरह लोक कह निस्तार।
0: सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग।
1: जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय।
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे, नानक उतरे तिन कह साथे।
1: शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए।
0: मिट गए बैर पय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन।
1: सो प्रसन्न पय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव।
0: आल जंजाल बिकार ते रहते, राम नाम सुरस ना कहते।
1: कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभी खेप हमारी।
0: ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ
0: ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ
1: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ
0: ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਟ ਚਲੇ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
1: ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ
0: ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪਵ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਭ ਕੈ ਮਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ
0: ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤ ਤਤ ਕਾ ਬੀਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
1: ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ
0: ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਮਤਾਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਛੁਟੈ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਚੀਤ
0: ਮਰਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਹੈ ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ਹੈ
1: ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅਮਰਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ
0: ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਬੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ
1: ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚੌਵੀ

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: 55 वर्ष की आयु में मैंने यही महसूस किया कि जीवन बहुत सारे सुनहरे अवसरों से भरपूर है। साथ ही साथ मैंने प्यार और प्रकाश की शक्ति को भी महसूस किया। थोड़े समय से मैं अनुभव कर रहा था कि मैं जिससे भी मिलता हूं वो कुछ ना कुछ खोज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं कुछ विशेष, शायद खुशी, संतोष, मन की शांति। 10 मास पूर्व मेरी मुलाकात लंदन में एक महान आदरणीय योगी से हुई। तब से एक लंबी तलाश के पश्चात मेरा जीवन एक दरिया के समान धीरे धीरे विशाल सागर की ओर बहने लगा। इस मुलाकात के थोड़े समय बाद ही माउंट आबू राजस्थान से मुझे पीस ऑफ माइंड कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण मिला, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। इसे प्यार से मधुबन कहा जाता है। भारत यात्रा की मेरी बरसों की इच्छा थी और ये था मेरे लिए समय का बुलावा। उस महान योगी ने मुझे जो प्रश्नों पर गहराई से विचार करने को कहा था, मैं कौन, परमात्मा कौन, मेरे दिल की गहराई से बार बार यही आवाज आ रही थी कि इस यात्रा में मेरे प्रश्नों का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। भारत पहुंचने के पश्चात जल्दी ही वहां की सड़कों पर निरंतर चलने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों और स्वच्छंद रूप से विचरण करते पशुओं से मैं परिचित हो गया। माउंट आबू जाने के मुख्य रास्ते पर हमने ऊंट गाड़ियां देखी, उनके कारण जगह जगह हमें रुकना भी पड़ा। खैर, हम सही सलामत ठीक समय पर आबू रोड पहुंच गए। आबू रोड अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। माउंट आबू समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां पहुंचने के लिए हम 1 घंटे तक संकरे और घुमावदार पहाड़ी विस्तार में पड़ते रहे। हरे भरे मन भावन दृश्यों को देखते देखते अंततः ज्ञान सरोवर प्रांगण में पहुंचे। इसका दूसरा नाम एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड भी है। वहां पहुंचते ही वहां का वातावरण बाह्य जगत से बिल्कुल ही भिन्न महसूस हुआ, जैसे कि हम निर्वाण में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने वास्तविक घर में पहुंच गया हूं। इस परिसर में चारों तरफ स्नेह और अपनत्व का आभास हो रहा था, जैसे एक परिवार, एक नए परिवार, एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हूं। सुव्यवस्था और स्वच्छता हर तरफ विद्यमान थी। सुंदर फूलों, पेड़ पौधों और हरे भरे घास के मैदानों से हर कोना सजा हुआ था। अत्यंत गहरी शांति की महक चारों तरफ छाई हुई थी। एक ऐसा स्थान जहां शोरगुल का और किसी अप्रिय बात का नामो निशान न था। सहयोग, सद्भावना, सादगी, सहनशीलता, एकता और सम्मान के गुण सर्वत्र दिखाई दे रहे थे। वायुमंडल में चंपा और चमेली की महक से भीगी खुशी और आनंद की तरंगे फैली हुई थी, जो अलौकिक आनंद की अनुभूति करा रही थी। इस विश्वविद्यालय द्वारा माउंट आबू में बनाया गया ज्ञान सरोवर दूसरा कॉम्प्लेक्स था। 1995 में पूर्ण किए गए इस कैंपस में 1500 मेहमानों को ठहराने की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ 250 समर्पित राजयोगियों के रहने का संपूर्ण प्रबंध है। रात्रि भोजन के पश्चात हमें इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संक्षिप्त इतिहास से अवगत कराया गया।
1: जब उनसे पूछा जाता है,
0: 1936 में 60 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा बाबा के द्वारा माताओं बहनों के छोटे से संगठन को लेकर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। उस परम शक्ति द्वारा कई दिव्य साक्षात्कार कराए गए, जिन्हें परमात्मा, शिव, अल्लाह आदि कई नामों से जाना जाता है। उन्होंने स्वयं को गुरु नहीं बल्कि परमात्मा का माध्यम माना। ब्रह्मा बाबा पहले एक सुप्रसिद्ध रईस और हीरों के भारतीय व्यापारी थे। इन्होंने माताओं और बहनों को संस्था के संचालन का संपूर्ण कार्यभार देकर उन्हें सम्मानित कर शक्तिशाली बनाया। इन्होंने 93 वर्ष की आयु में अपने भौतिक शरीर को त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। उनके अव्यक्त होने के बाद इस संस्था का विस्तार तीव्र गति से हुआ। वर्तमान समय में संस्था का कारोबार उन महान विभूतियों के द्वारा हो रहा है जिनकी आयु प्रायः 80 वर्ष के नजदीक है और वे दादी के रूप में जानी जाती है। दादी यानी बड़ी बहन, जिन्होंने संस्था के प्रारंभ में स्वयं को सेवा के प्रति तन मन धन से समर्पित किया। यहाँ की हर सेवा मातृत्व स्नेह की झलक दे रही थी। ये दादियाँ अपनी बड़ी उम्र के बावजूद पूरे विश्व में अथक रूप से निस्वार्थ सेवा हेतु भ्रमण करती रहती हैं। उसके बाद हमारा परिचय दादी प्रकाशमणि जी से कराया गया, जो इस विश्वव्यापी संस्था की मुख्य प्रशासिका है। मुझे ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा कुमारी इसका वास्तविक अर्थ है ब्रह्मा की पुत्री। 1936 में अपनी बाल्य अवस्था में ही दादी जी ने इस संस्था में पदार्पण किया। तत्पश्चात इस मायावी दुनिया से संपूर्ण रूप से अलग हो गई। वे एक बहुत ही कुशल संचालिका के रूप में भी उभर कर सामने आई। समग्र विश्व की राजनैतिक और आध्यात्मिक विभूतियों द्वारा उनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है। दादी जी ने बताया, आध्यात्मिकता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है जो सबके जीवन से प्राय लुप्त हो चुका है। दादी जी से संपूर्णता में प्राप्त होते ही शुद्धतम स्वर्णिम ईश्वरी प्रेम के स्पंदन, सद्भावना शांति और समृद्धि से संपन्न योग, जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हो, जिसकी कल्पना सदियों से मानव करता रहा है, जहां क्रोध स्वार्थ और बेईमानी का नामो निशान ना हो, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ही मानवता का पुनरुत्थान संभव है। मेरे बाकी के दिन वार्तालाप श्रृंखलाओं, सेमिनारों, योगाभ्यास, अन्य परिसरों के परिभ्रमण, सैर, खरीदारी, दर्शनीय स्थलों के अवलोकन, पिकनिक, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बीते। इसी दौरान हमने दिलवाड़ा मंदिर भी देखा, जो भारत में जैन वास्तुकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। परिसर विहार के अंतर्गत ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अत्यंत दुर्गम स्थान पर स्थित होते हुए भी यहाँ उच्च तकनीकी के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर भोजन पकाने, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ टेलीफोन एक्सचेंज, कंप्यूटर और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए भी विद्युत उत्पादन सौर ऊर्जा से ही होता है। मैंने इस बात पर भी गौर किया कि यहाँ पर भोजन भी परमात्मा की याद में ही रहकर बनाया जाता है, जहाँ शुद्ध रूप से शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। उस दिन का प्रमुख प्रवचन दादी जानकी द्वारा दिया गया, जो इस संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका है। दादी जानकी जी लंदन में रहकर विदेश सेवाओं का संचालन करती हैं। दादी जी को एक कुशल वक्ता और मार्गदर्शक होने का वरदान प्राप्त है। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही दूसरों के हित का ख्याल रखना दादी जी की विशेष धारणा रही है। एकाग्रचित स्थिति और संपूर्ण दृढ़ता, ये दोनों ही गुण उनके जीवन की विशेष शोभा है। दादी जी बुद्धिमत्ता के वाहक नामक ईश्वरीय और धार्मिक गुरुओं के उस संगठन के सदस्य हैं, जो राजनेताओं को पर्यावरण एवं मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित सलाह देता है। इन दादियों की विनम्रता, निस्वार्थ प्यार, निरअहंकारिता, विनोद वृत्ति और हृदय की विशालता से हर कोई प्रभावित होता है। उनका अपना कुछ न होते हुए भी वो संसार को सब कुछ दे रही हैं। ये दादियाँ अपने कार्य चेहरे पर शिकन लाए बिना अथक रूप से करने के लिए विख्यात हैं। शायद ही ऐसा कोई प्रसंग होगा जब दादियों से भेंट के दौरान टोली अर्थात प्यार से निर्मित प्रसाद न प्राप्त हुआ हो। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन एवं बुद्धि को भी रूहानी स्थिरता मिलती है। दृष्टि दो व्यक्तियों के बीच सरल वार्तालाप का माध्यम है, जिसके द्वारा दूसरी आत्मा के अंतर जगत को गहराई से देखा जा सकता है। हर एक रूहानी हस्ती में छुपी पवित्रता और प्रकाश की शक्ति और उसके सद्गुणों का दर्शन भी किया जा सकता है। एक दिन हम मधुबन भी गए, जो ब्रह्मा बाबा की तपस्या स्थली है। यहीं से ही संस्था की व्यवस्था संचालित होती है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहन रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पहुँचने मात्र से ही अति सहज रूप से शांति की गहरी अनुभूति होती है। योगी जीवन का अर्थ सिर्फ गंभीर हो जाना ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त खुशी और आनंद का माहौल ध्यान देने योग्य था। इसकी एक सुंदर झलक यहाँ के दर्शनीय और मनोरंजक पीस पार्क में भ्रमण के दौरान मिली।

नैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया।

हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है

चला यह तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं।

मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई।

चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि मां की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं।

कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा।

विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी।

आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

बड़ा सुंदर वर्णन है। मीराबाई को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और वो भी स्वप्न में। तो देखिए कितनी सुंदरता से वर्णन किया है। पलका पर सो

अर्थात जब मैं सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गई तो लेटते ही मुझे नींद आ गई और स्वप्न में प्रभु आ गए। पलका पर सो

तो कुछ मूल्य चुकाया जाता है। तो अगर गोविंद खरीदा है तो उसका मूल्य क्या था, क्या चुकाया उसके बदले में,

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
5: मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए।
6: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
4: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
4: The end we've been waiting for. दृश्यम द कंक्लूजन in cinema 2nd October.
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
4: Overseas release by Z Studios.
8: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
9: और जो हुकम मेरी सरकार।
8: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
9: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
8: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
9: आहो जी आहो।
8: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
10: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
11: रेडियो हांजी 1674 AM।
12: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
13: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
14: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
13: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
14: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
15: टुट पैणी इंग्लिश ने, देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नूं।
16: है पुत, पहला मैनू अंग्रेजी बोल के दिखा।
17: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली, ही हैव 4 लेग, 2 ईयर, 2 आई, वेरी गुड, शी वेरी फास्ट काओ।
16: हुण मेरी जठाणी नूं पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ।
18: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
19: ना पुत, इंसान नु परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी।
13: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
14: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
13: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
14: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: Radio RG, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।